0: अनि त्यसपछि के भयो त बाबा?
1: त्यसपछि के भयो फेरि पछि भनौला है बालक।
2: भोलि कैलाश पति शिव पार्वती की जय। बोलिए बम्बई जाने रे।

0: नमस्कार, म साहित्यकार एवं गीतकार लक्ष्मी सविश। मैले 7 पुस्तक बजारमा ल्याइसकेको छु र मेरा सृजनाहरू धेरै पाठकहरूले मन पराएको
1: छ। खन प्रलो शैली हतार नै
2: हो या छु नेवाली वा छिजी तारे मुई पिवा मिमेमी मार्वलरी त्रिवा बीरा देशी सर मोबाग गंगा आग गैलरी या वो मैं आचूं
1: मैं याम बीरा तैयार तड़ी वा तारे नासर बजार लंबी मु मेडल कप ट्रॉफी प्रमाण पत्र बैनर को बनेल पर दी बीरा या वो मैं लो खारे तारे प्रे याना से दी
2: सो गंगा आग गैलरी तो बने वा आचूं
1: तर मी मार्बलर फ्रिवा साइन बोर्ड होर्डिङ बोर्ड लाइट बोर्ड जम्मै बनिम रो फोटो प्रिन्ट टी सर्ट प्रिन्ट स्टिकर कटिम लम रो छलासी ब्याज जे माया चिलो भनेम रो
2: पहिले भनेको मैले सबै बुझ्यो कान्छा गंगा आर्टमा के पाइन्छ भनेर एकपटक पहिले सबै भन्दियो त नेपाली भाषामै।
3: बेसीसर नगरपालिका 7 पुरानो बैंक चोकमा रहेको गंगा आर्ट ग्यालरी फ्लेक्स प्रिन्टमा मार्बल आर्ट फ्लेक्स प्रिन्ट साइन बोर्ड होर्डिङ

0: 鬼。
1: 哦，来来来来，俺们这边的人在俺们这边待着，那今儿给别人来。
2: 来，俺们上个叫什么名？
1: 来。
3: 你有玩过没？
4: 你还摆的高吗？你看看，你背。
3: रात अभी बाकी था, एक किशन दोषी का ना किसकुला जाने जाऊँगा।